0: சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला

0: फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन तीन देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
2: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code UCC Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Addressing a press conference, Chief Minister Mohan Yadav said that the UCC

0: पर चलो निरंतर, थमना यहाँ निषेध है। जीवन की हर राह कठिन है, संघर्षों का ही गेह है। आशा मत बांधो फल की, केवल कर्म तुम्हारा सत्य है। परिश्रम से ही खिलते हैं सफलता के मधुर रथ, परिश्रम से ही खिलते हैं सफलता के मधुर रथ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये ओजस्वी पंक्तियां हमें जीवन में कभी भी ना रुकने और फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा देती हैं। दिनकर कहते हैं कि हमारी इस कर्म भूमि यानी कि संसार में हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ रुकना या ठहरना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। वे मानस के मन के भीतर जीवंतता की अलख जगाने के लिए कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही अटल सत्य है और सच्ची लगन और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। कर्म के सिद्धांत के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः, मा कर्म फल हेतु भुर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। अर्थात इंसान को अधिकार केवल कर्म करने का है, फल के विषय में विचार करने का बिल्कुल नहीं। मनुष्य को परिणाम के बजाय ईमानदारी और पूर्ण क्षमता से अपना काम करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें फल की इच्छा किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तो इन्हीं सुविचारों के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं नीना अरक्कल। नीना, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: हेलो मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। यस मुकेश, सर्विस एंड सर्विंग जी others is the best way to find yourself.
0: Bilkul.
1: And it is in the service of others that you lose yourself for others.
0: Bilkul.
1: And that's what Mahatma Gandhi said. And so dear listeners, whom can you serve today with a smile?
0: Ji, bilkul.
1: We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 20th of July 2026. So let's begin with the headlines.
0: Ji, bilkul. संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं।
1: President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia, and Romania yesterday. The visit to the three European countries is

0: expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties. The focus of the visit is on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges.
1: सरकार देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सफाई कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता तंत्र नमस्ते योजना लागू कर रही है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य मशीनीकृत सफाई, कौशल विकास और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई प्रक्रिया को समाप्त करना है।
0: Goa has emerged among the top performing states in implementing the Jan Vishwas reforms. Through the Goa Jan Vishwas Laws Amendment Act 2026, the state has undertaken a major legislative reform exercise to strengthen trust-based governance, simplify regulations, and improve ease of doing business. For details, our correspondent has this report.
2: The reforms simplify government rules and reduce the compliance burden on citizens and businesses. The Act replaces criminal prosecution for many minor technical and procedural offences with monetary penalties and administrative action. It also provides for the timely delivery of notified public services and allows fines and penalties to be revised from time to time. The reforms are expected to benefit micro, small and medium enterprises, startups and other businesses by reducing unnecessary litigation and making compliance simpler. According to a national report on the implementation of the Jan Vishwas framework across NDA-ruled states and union territories, Goa has emerged among the top-performing states in adopting these reforms. For Aaj Sabere, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Parji.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी।
0: India Meteorological Department IMD has issued red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir for the next 2 days. According to IMD, heavy to very heavy rainfall is expected over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today.
1: Aur shrotaon, Spain ne FIFA Vishwa Cup jeet liya hai.
3: One final act of this incredible summer of soccer for Rodri to lift the trophy and for the celebrations to begin both here and over.
1: फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरान टोरेस ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। स्पेन दूसरी बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है। और अब कार्यक्रम आज सवेरे में बात महानगरों की खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से जुड़े समाचारों की। नैना
4: जी,
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर आज से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यातायात पुलिस के अनुसार संसद सत्र के दौरान वाहनों की आवाजाही बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई प्रमुख मार्गों तथा चौराहों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। यातायात पुलिस ने लोगों से रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोका रोड, तालकटोरा रोड सहित इनके आसपास के मार्गों से यथासंभव बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही विजय चौक, बोट क्लब, जलेबी चौक सहित कई प्रमुख चौराहों पर भी यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में जनपथ, मानसिंह रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, 11 मूर्ति और सरदार पटेल मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, ड्यूटी पर तैनात यातायात कर्मियों के दिशा निर्देशों का पालन करने और यात्रा की योजना से पहले अपनी योजना को अंतिम रूप देकर बाहर निकलने की अपील की है। और दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनज़र नई दिल्ली ज़िले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए

0: including playing music or videos loudly without headphones, has been increased from 500 to 2,500. BMRCL said the revised rules will be enforced strictly across the Namo Metro network. And now what do we have from Kolkata, Mukesh?
1: पश्चिम बंगाल में आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की तर्ज पर एक विशेष जांच एजेंसी SIA गठित करने की पहल जारी है। कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कल कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस संबंध में आयोजित की गई थी। इसमें इस विषय पर चर्चा की गई। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करेगी। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमणों को हटाने, पुलिस के आधुनिकीकरण और साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के संबंध में त्वरित कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा हुई। तो अभी आपके पास और कौन से महानगर की खबर शेष है?
0: Mukesh, now I have Hyderabad news. The Indian Institute of Technology, Hyderabad, in collaboration with the Bengaluru-based Center for Nano and Soft Matter Sciences, successfully hosted Nano Jatha 2026 yesterday, organized as a flagship pre-event for the upcoming Bengaluru India Nano 2026 Summit. This national science outreach initiative drew a large gathering of students, researchers, and faculty members from across the region. The day-long event aimed to introduce young minds to the transformative potential of nanoscience in fields like healthcare, clean energy, 5G, 6G communications, and environmental sustainability.
1: तो श्रोताओं, ये थे अब तक के कुछ महानगरों से जुड़े समाचार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और नीना के साथ। कार्यक्रम में अब बात महानगरों के मौसम की। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में इधर आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में भी आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता की अगर बात करें तो शहर में आज तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं नीना से।
0: चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 27 डिग्रीज एंड मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस अ जनरली cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 33 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो जानते हैं 20 जुलाई के दिन क्या कुछ ऐसा महत्वपूर्ण हुआ जो इतिहास बन गया। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में।
0: Yes, Mukesh. Today on International Chess Day, we celebrate more than just a game. We celebrate a timeless language of strategy, patience and intellect that has connected humanity for centuries. Since the official founding of the International Chess Federation in 1924, this game of kings has transcended borders, cultures and generations, proving that a board of 64 squares can hold infinite possibilities. Whether you are a grandmaster calculating moves deep into the endgame or a beginner learning the power of the first pawn push, chess teaches us that every decision carries weight and every setback is an opportunity to reposition for victory. Today, let's honor the discipline, the beauty of the gambit, and the endless pursuit of mastery. Pick up a piece, make your move, and keep the tradition alive, because in chess, as in life, the next move is always yours to define. And in fact, Mukesh, there's a movie on chess, Shatranj ke Khiladi, if you remember.
1: अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में नीना बात करें, भारतीय संदर्भ में अगर हम शतरंज को लेकर समझें, तो शतरंज जैसा ही एक खेल गुप्त काल में 319 से 543 ईस्वी के दौरान भी खेला जाता था, जिसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था उस समय में। इसके बाद ये

0: केल भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में शुरू हुआ और सिल्क रूट से होते हुए पश्चिम में फारस तक फैला। फारस पहुंचने पर इस खेल को चतुरंग और बाद में शतरंज का नाम दिया गया। फिलहाल भारत के कई खिलाड़ी शतरंज में दुनिया भर में देखा जाए तो अपनी बुद्धिमता का परचम लहरा रहे हैं और भारत का भी जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के माध्यम से भी ऊंचाइयों को छू रहा है।
1: Absolutely.
0: बिल्कुल। और श्रोताओं, आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1969 में अपोलो 11 यान ने पहली बार इंसान को चंद्रमा पर पहुंचाया था, जब नील आर्मस्ट्रांग ने उस वीरान लेकिन जादुई सतह पर अपना पहला कदम रखा। तो उन्होंने केवल एक मिशन नहीं पूरा किया, बल्कि मानवता के लिए संभावनाओं के एक नए युग का द्वार खोल दिया था। ये मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन पूरी मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। उनके ये शब्द आज भी हमें याद दिलाते हैं कि यदि साहस और विज्ञान का मिलन हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आज जब हम उस महान उपलब्धि को याद करते हैं तो हम न केवल उस साहस को नमन करते हैं, बल्कि अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में छिपे भविष्य के सपनों को भी सलाम करते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो अभी से एक दो दिन पहले ही भारत के पहले निजी तौर पर तैयार किए गए एरोस्पेस जो विक्रम 1 रॉकेट है, उसने भी पृथ्वी की पहली कक्षा में अपना पेलोड स्थापित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और ख्याति दिलाई है।
1: That's amazing.
0: बिल्कुल। अब बात करते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में।
1: In 1810, Colombia declared its independence from Spanish colonial rule.
0: जी।
1: The day is celebrated as Colombia's Independence Day. In 1903, the Ford Motor Company delivered its first automobile, marking a milestone in the history of the automobile industry.
0: और 1924 में डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी आज ही की तारीख को की थी। ये संगठन भारत में दलित वर्गों के बीच शिक्षा का प्रसार करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए समर्पित था।
1: In 1944, German military officials launched the July plot, a failed attempt to assassinate Adolf Hitler using a hidden bomb.
0: अगर बात करें 1969 की तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के अचानक निधन और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के इस्तीफे के बाद एम हियादतुल्लाह ने भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर आज ही की तारीख को पदभार ग्रहण किया था। और 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था, जो इस युद्ध का एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ था।
1: In 1976, NASA's Viking 1 spacecraft made the first successful landing on Mars and transmitted the first close-up images from the Martian surface.
0: और अब बात उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए, आज ही के दिन जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा या आज जिनका जन्मदिन है। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं बटुकेश्वर दत्त की। आज इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को वे उस समय जाने गए जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार हुए। उन्होंने आगरा में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में भी उल्लेखनीय कार्य किया था। बटुकेश्वर दत्त की भगत सिंह से भेंट 1924 में कानपुर में हुई थी। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में काम करना शुरू किया और इस क्रम में बम बनाना भी सीखा।
1: Guglielmo Marconi was an Italian physicist and inventor of a successful wireless telegraph or radio. In 1909, he received the Nobel Prize for Physics, which he shared with German physicist Ferdinand Braun. He later worked on the development of shortwave wireless communications, which constitutes the basis of nearly all modern long-distance radio. Marconi's father was Italian and his mother Irish. Educated first in Bologna and later in Florence, Marconi then went to the technical school in Leghorn, where in studying physics he had very opportunity for investigating electromagnetic wave technique, following the earlier mathematical work of James Clerk Maxwell and the experiments of Henry Hertz, who first produced and transmitted radio waves, and Sir Oliver Lodge, who conducted research on lightning and electricity.
0: आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त को। उन्होंने अपनी दिलकश आवाज से लगभग 3 दशकों तक करोड़ों श्रोताओं को मदहोश किया। कालजयी फिल्म प्यासा के गीतों को स्वर देने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त के

0: पति थे लोकप्रिय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरु दत्त। आइए सुनते हैं 1956 में आई फिल्म भाई भाई में गीता दत्त की आवाज में गाया गया ये खूबसूरत सा नगमा।
1: Hey,

गीता दत्त को सबसे पहले वर्ष 1946 में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए गाने का मौका मिला था। गीता दत्त की मुलाकात 1951 में निर्देशक गुरुदत्त से फिल्म बाजी के दौरान हुई। इसके गाने तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना लेने उनकी आगे की तकदीर लिखी और बतौर पार्श्व गायिका फिल्म इंडस्ट्री में वे स्थापित हो गईं।

और श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के 50 और 60 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता अभिनेताओं में से शुमार राजेंद्र कुमार की आज जयंती है। वे जुबली कुमार के नाम से प्रसिद्ध रहे। एक अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी दिलीप कुमार अभिनीत जोगन। इसमें उनका किरदार भले ही छोटा था, लेकिन उनकी सफलता का सफर यहीं से शुरू हुआ। आइए तो क्यों ना सुना जाए 1966 में आई उनकी फिल्म सूरत से ये खूबसूरत।

गूंज उठी शहनाई में पहली बार वो एक अभिनेता के तौर पर दिखलाई दिए। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार का अभिनय आज भी लोगों के जहन में है। उसके बाद उन्होंने धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम और आरजू जैसी कई फिल्मों में सराहनीय अभिनय किया। आइए सुनते हैं 1970 में आई फिल्म गीत से उन पर फिल्माया गया ये एक और सुंदर सा नगमा।

0: मुख्य ऑडिटोरियम में फिल्म क्लब के तहत विस्पर्स ऑफ द माउंटेन्स भी दिखाई जाएगी, इसमें भी आप शिरकत कर सकते हैं। तो घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम आज सवेरे को यहीं संपन्न किया जाए। इसके साथ ही मुकेश और नीना को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आपके सुपुर्द छोड़ने की।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी

0: विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में UCC विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: UCC विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्डोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमेरिका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार।

0: समाचार शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ते ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में संसद की 19 बैठक होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि

0: पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाऊ में मालडोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मालडोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालडोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मालडोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मालडोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मालडोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के खिलाफ समूचे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक राष्ट्रवादी साहसी व्यक्तित्व बताया जिन्होंने अन्याय और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also

0: இது ஜிதி. और अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी. राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बात करेंगी. इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी.
1: मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगे. किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्डोवा की पहली यात्रा है. राष्ट्रपति तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं. यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंचेंगे. वहां वे राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दाबुकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. वे मोल्डोवा के प्रधानमंत्री रिस्ट्रिजन मिकोस्की से भी मिलेंगे और नॉर्थ मैसेडोनिया के असेंबली को संबोधित करेंगे. इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू भारत नॉर्थ मैसेडोनिया व्यापार फोरम को भी संबोधित करेंगे. यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को रोमानिया पहुंचेंगी. रोमानिया के दो दिन की यात्रा में वे वहां के राष्ट्रपति, अंतरिम प्रधानमंत्री और सीनेट अध्यक्ष से मिलेंगे. विश्व दर्पण के लिए मैं आशा निवेदी.
0: ईरान में अस्थिरता और हाल में संघर्ष तेज होने को ध्यान में रखते हुए तेहरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी किया है. दूतावास ने सुरक्षा हालात में सुधार आने तक किसी भी उद्देश्य के लिए ईरान की यात्रा करने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को फिलहाल यात्रा टालने की सलाह दी है. ईरान में पहले से रह रहे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध उड़ान विकल्पों के जरिए अंशकालिक तौर पर ईरान से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए.
2: ईरान में रहने पर विचार करने वाले भारतीय नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. भारतीय नागरिकों को स्थिति से पूरी तरह अवगत रहने के लिए समाचारों पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है. भारतीय नागरिकों को सैन्य गतिविधियों की अधिकता वाले ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में जाने से बचना चाहिए. नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों को निर्देशों का सावधानी से अनुपालन करने को भी कहा गया है. दूतावास ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल दूतावास में अपने ब्यूरो का पंजीकरण कराने की सलाह दी है. आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर +98912810915 +98912810909 +98912810902 और +98993217 9359 जारी किए गए हैं. विश्व दर्पण के लिए मैं इशिका.
0: अमेरिका ने लगातार नवी रात ईरान पर हमले किए. अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है.
3: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है. इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे. अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे. पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं. पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं. अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है. समाचार कक्ष से अमीशा.
0: उत्तरी इराक में ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के दौरान तीसरे अमरीकी सैनिक की मौत हो गई. इससे पहले अमरीकी केंद्रीय कमान ने जॉर्डन में अज्ञात शवों का पता लगाने की बात कही थी जहां ईरानी हमले में दो अमरीकी सैनिक मारे गए और एक लापता था, लेकिन अब मृतकों की संख्या 3 हो गई है. विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है. अमेरिका में भारतीय समुदाय के एडवोकेसी ग्रुप ने अमेरिकी कांग्रेस और संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक और आवर्जन सेवा से यह अपील की है कि वे विद्यार्थियों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए वीजा पाबंदियों पर नई 4 साल की सीमा लागू न करें. फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज में नीति और रणनीति की प्रमुख खांडे राव कांड ने कहा कि अमेरिका की प्रतिस्पर्धा क्षमता को खुद नुकसान पहुंचाने जैसा.

0: उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्रोग्राम या रिसर्च के बीच में ही बाहर जाना पड़ सकता है, लैब्स को जरूरी प्रतिभा को खोना पड़ सकता है और अमरीका अपनी नवाचार पाइपलाइन इस तरह प्रतिस्पर्धियों को सौंप देगा।
1: ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने विदेशी विद्यार्थियों, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के लिए वीजा नियमों को सख्त कर दिया है। इससे वो पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई है जिसके तहत वे बिना सरकारी निगरानी के देश में अनिश्चित काल तक रह सकते थे। समूह ने प्रशासन से अपील की है कि वे इसे लागू करने की प्रक्रिया टाल दें, विद्यार्थियों की सुरक्षा करें और अमेरिका के अनुसंधान और नवाचार को बचाए रखें। 2025 में नए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी नामांकन में पहले ही 17% की गिरावट आ चुकी है। ये महामारी के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: गुयाना नौका दुर्घटना में अब तक 67 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कल गुयाना में 116 यात्रियों और चालक दल के 17 सदस्यों को लेकर जा रही एक बड़ी नौका समुद्र में डूब गई थी। कई लोग अब भी लापता हैं। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने मीडिया को बताया कि इस नौका की क्षमता 300 से ज्यादा यात्रियों को ले जाने की थी। लोक निर्माण मंत्री जुआन एडगिल ने कहा कि कल स्थानीय समयानुसार रात 11:01 पर नौका के संकटग्रस्त होने की सूचना मिली और इसके बाद व्यापक बचाव अभियान चलाया गया। आपात टीमें अब भी लोगों की तलाश कर रही हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
2: One final act on this incredible summer of soccer for Rodri to lift the trophy and for the celebrations to begin both here and overseas. And when Rodri's ready, here we go. Spain have won the World Cup.
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और हॉर्मुज जलजमरू मध्य में तनाव और गहराया। भारत ने बढ़ती अस्थिरता के बीच नागरिकों को ईरान यात्रा स्थगित करने का परामर्श दिया। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीता और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good morning. This is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the world news. The headlines. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with her Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tension deepens. India advises its citizens to postpone travel to Iran amid rising instability. Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And in men's cricket, England beat India by 27 runs in third ODI to seal three-match series 2-1.

0: ஒலித்த பாடலுடன் சுகமான ராகங்கள் நிறைவு பெற்றது. மீண்டும் திரைப்பட பாடல்களை 11:10 கேட்டு ரசிக்கலாம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के सत्र में सदन की 19 बैठकें होंगी। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। संसद परिसर में श्री मोदी ने मॉनसून सत्र को उत्पादक बनाने पर बल दिया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं तथा मर्यादा का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पर श्री बिरला ने कहा कि विधायी और अन्य संसदीय कार्यों का सुचारू संचालन और अधिकतम कार्य निष्पादन सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बिरला ने कहा कि इससे जनता का विश्वास

0: और मजबूत होगा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का कद बढ़ेगा। श्री बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने बताया था कि सुरक्षा कारणों से जनपथ राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। अमरीका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है। अमरीकी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पंजाब सरकार ने मनरेगा से विकसित भारत जी रामजी योजना में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार के अवसरों की सुरक्षा और राज्य में विकास कार्यों के निर्बाध निष्पादन को भी सुनिश्चित किया गया है। पहली जुलाई से पंजाब में लागू हुई विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत वेतन के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। अतिरिक्त समय में गोल करके फेरान टेरिस ने अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament has begun. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. Now, we'll take you live to the session.
2: Kulam, Kerala mein hua. Shri Pyarelal Sangwar, Uttar Pradesh ke Ghatampur Sansadish Nivachan Kshetra se 13vi Lok Sabha ke sadasya the. Isse purve do karyakaron ke liye Uttar Pradesh Vidhan Sabha ke sadasya bhi rahe. श्री प्यारे लाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट बी इट द मॉनसून और द मॉनसून सेशन, इफ बोथ आर प्रोएक्टिव दे प्रूव टू बी हाईली प्रोडक्टिव। Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings.
3: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. Aur dono ko productive hote hain, to desh ka kalyan hota hai, jeev matra ka kalyan hota hai. Sathiyo, pichle ek mahine mein, देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी

0: மெல்லிசை பாடல்கள் கேட்டோம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜாகிருதி சர்மா. संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी हैं, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है, और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

0: है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. They were Nadendra Bhaskara Rao, Omvati Devi, Sudhanshu Seal, Major General Bhuvan Chandra Khanduri, retired, K.P. Dhanapalan and Pyare Lal Sankwar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued their protest. Amid ruckus, the chair adjourned the House till 12:30 p.m. When the House met after the second adjournment at 12:30 p.m, the opposition members again continued with their protest over NEET paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, tried to take up the zero hour, but the opposition members continued their protest. Mr. Saikia said there should be healthy debate in the House and people have sent their representatives to raise important issues. The opposition members did not pay heed to the chair's advice. It led to adjournment of the House till 2 p.m. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, the protest continued. The chair adjourned the House till 2 p.m. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal today introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance to increase the number of Supreme Court judges from 33 to 37. Prime Minister Narendra Modi has said, be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of Parliament, he said, when both are productive, it leads to the welfare of the nation and the well-being of all living beings. Mr. Modi said it is a powerful message that the potential and aspirations of the country's youth are as boundless as space itself.
2: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स

0: Across all sides of the House to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the House.
1: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है. केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है. लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है. जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए. मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है. केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं. संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं.
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है. साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है. चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं.
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया. ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुटको पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था. इनमें 440.42 करोड़ रुपए जमा थे. ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी. संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं. दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं. त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का

0: कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मालदवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मालदवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमेरिका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाए। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 370

0: 80 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் 2:30 நிமிடம்.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार

0: शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज सदन में नीट मुद्दे पर 6 बार स्थगन हुआ। निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई। बाद में सदन ने अपने पूर्व सदस्यों बलबीर के पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगसाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका अंतर सत्र के दौरान निधन हो गया था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, हालांकि हंगामे के कारण राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन को दोपहर 12 बजे तक, फिर 12:30 बजे तक और फिर 12:50 मिनट पर स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरवंश ने सदन चलाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामे के बीच सदन को पहले 2:30 बजे तक और फिर कल दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी मुद्दे पर लोकसभा की बैठक भी दोपहर बाद 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। पांचवें बार स्थगन के बाद दोपहर 2:30 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर अपना विरोध फिर से जारी रखा। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदन को दोपहर बाद 3 बजे तक स्थगित कर दिया। दोपहर 1 बजे जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने निर्धारित कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह नहीं मानी और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि संसद परिसर और उसके आसपास भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहने की संभावना है। लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि आरोप पूरी तरह झूठे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनका किशिनो स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ஆயுஷ்மான் பாரதம் திட்டத்துக்கு உட்பட்ட சுமார் 60 கோடி மக்கள் 5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான இலவச மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உரிமையாளர்கள். 12 கோடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு இதுவரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் ஏழை குடும்பங்களின் மருத்துவ செலவில் சுமார் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆயுஷ்மான் செயலியை இன்றே பதிவிறக்கம் செய்து ஆயுஷ்மான் அட்டையை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும் தகவல்களுக்கு 1455 என்ற எண்ணோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल।

0: नमस्कार। रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 24 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 16, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध URL लिंक पर आप जा सकते हैं। ये लिंक है fr.iitism.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2026। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में सहायक कुल सचिव का पद रिक्त है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। शैक्षिक योग्यता, पात्रता और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की वेबसाइट www.iitism.ac.in। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से 15 अगस्त 2026 को रात्रि 11:59 तक भेजे जा सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चिकित्सा अधीक्षण अभियंता, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ विश्लेषक, मुख्य चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी, केंद्रीय निष्कीटीकरण एवं आपूर्ति विभाग अधिकारी, अस्पताल वास्तु सुरक्षा एवं भंडार अधिकारी, वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रधान निजी सचिव, मुख्य चिकित्सा अभिलेख अधिकारी, भंडार अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी। आवेदन का फॉर्मेट और अन्य विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट देख सकते हैं आप। वेबसाइट है www.aimsbhopal.edu.in। बसु विज्ञान मंदिर कोलकाता एक पद के लिए ऑडिट एंड फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये भर्ती डेपुटेशन के आधार पर है जिसमें पे लेवल 10 रहेगा तथा पद की अवधि 3 वर्ष है। विस्तृत रिक्ति विज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया, नियम और शर्तों तथा अन्य निर्देशों के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.jcbose.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: हमें एक अवसर देती है दिन भर की घटनाओं को समझने का, उनसे सीखने का और कल की ओर एक नई दृष्टि से बढ़ने का। इसी उद्देश्य के साथ आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ होगी क्षेत्रीय गतिविधियों और खेल जगत पर नजर। वहीं डेट लाइन में लेकर आएंगे एक ऐसा रोचक और विशेष विषय जो निश्चित रूप से आपको सोचने पर मजबूर करेगा। साथ ही याद करेंगे उन महान विभूतियों को भी जिनका आज के दिन से खास संबंध है। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा। हेलो सायरा।
1: हेलो वैष्णवी, नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड वैष्णवी ओपन द शो विद वेरी ब्यूटीफुल लाइंस के ढलती हुई शाम हमको कुछ मौका देती है। एंड यू वोंट बिलीव इट, एक्चुअली टुक मी टू वन इंटरव्यू दैट आई हैड एक्चुअली रेड ऑफ दिलीप कुमार साहब। उनसे जो है वो छत पे पतंग उड़ा रहे थे बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स। तो जब वो पतंग उड़ा रहे थे और सूरज ढलने लगा जब तो एकदम थम गए एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही जस्ट केप्ट लुकिंग एट दैट सेटिंग सन। व्हेन समबडी आस्क्ड हिम देन ही सेड दैट इस ढलते हुए सूरज को गौर से देखो, पता नहीं ये कल तुम्हें देखने को नसीब हो ना हो। सो ढलती हुई शाम एंड सेटिंग सन ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो मोमेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्शन दैट व्हाट हैज हैपेंड टुडे और इवन इफ यू आर जस्ट प्रॉब्ली यू नो नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग द स्टिलनेस ऑफ अ सेटिंग सन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बट वी आर हियर एवरी डे व्हेन द सन इज अबाउट टू सेट राइट बिफोर दैट टू गिव यू द परफेक्ट रैप टू द डे टेलिंग यू व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री ताकि आपको ये ना लगे दैट यू मिस्ड आउट ऑन समथिंग, वो जो फोमो ना हो, इजंट इट। सो यस वैष्णवी हैज ऑलरेडी टोल्ड व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो, ये सब कुछ होगा ताजा तरीन खबरें। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा सो वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव टू शेयर फ्रॉम देयर। ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर रफली। लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एडजर्न फॉर द डे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद व्यक्त की, कहा इससे देश का कल्याण होगा।
1: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू होल्ड्स डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद हर मॉल्डोवन काउंटरपार्ट माया सांडू इन चिसिनाओ।
0: और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।
1: एंड हस्ब दस्तूर हम जो है शो को शुरू करते हैं विद अ वेरी स्पेशल सेगमेंट डेट लाइन इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल चेस डे।
0: जी सायरा, कहा भी गया है अगर हम देखें तो शतरंज दिमाग की कसरत है। ये जो कहावत है ये ब्लेज पास्कल ने कहा था और ये शब्द आज भी पूरी तरह साबित होती है।
1: दैट्स राइट, टुडे दैट इज 20th ऑफ जुलाई, इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर चेस एंथुसियास्ट्स अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज इट्स इंटरनेशनल चेस डे।
0: बिल्कुल सही श्रोताओं, चाहे आप ग्रैंड मास्टर हो, शतरंज खेलना अभी अभी शुरू किया हो या सिर्फ चेक और चेकमेट जैसे शब्द ही सुने हो, आज का दिन दुनिया के सबसे पुराने रोमांचक और बुद्धिमत्ता बढ़ाने वाले खेल का जश्न मनाने का है।
1: एंड डू यू नो एक्चुअली व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड टुडे दैट इज 20th ऑफ जुलाई।
0: सायरा, 20 जुलाई का दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फिडे की स्थापना हुई थी। तब से फिडे दुनिया भर में शतरंज को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करने और खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण काम कर रहा है।
1: That's right. And here's another interesting fact that in 2019, the United Nations officially recognized International Chess Day, highlighting chess as a powerful tool for education, equality, cooperation and intellectual growth.
0: बिल्कुल सही कहा सायरा आपने। और अगर हम श्रोताओं ये सोचें ऐसा कि ये दिलचस्प नहीं है कि सिर्फ 64 खानों और 32 मोहरों वाला ये खेल हमें जिंदगी के कई अहम सबक सिखाता है, जैसे पहले से योजना बनाना, धैर्य रखना, समस्याओं का समाधान ढूंढना और सही समय पर सही निर्णय लेना।
1: That's right. Those are not just 64 squares. It's a complete battlefield. And we all know when one is in a battle, toh kin kin cheezon ki zarurat hoti hai? Determination, control, focus, the right decision-making power. Everything is involved. So yes, definitely those 64 squares are not just a board game, but an entire battlefield that can teach you how to probably tackle the battle of life as well. And speaking of history, did you know that chess actually originated in India?
0: जी हाँ, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में इस खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। ये युद्ध नीति पर आधारित खेल था जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ जैसे असैन्य टुकड़ियां शामिल थी। समय के साथ यही खेल विकसित हो

0: होकर आज के आधुनिक शतरंज में बदल गया, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग खेलते और पसंद करते हैं।
1: That's really something to be proud of. From India to the entire world, chess has truly crossed all borders.
0: सारा, मुझे लगता है कि ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी कि भारत ने दुनिया को शतरंज जैसा अनमोल खेल दिया है। आज भारत शतरंज की दुनिया में एक मजबूत पहचान बना चुका है और चतुरंग की समृद्ध विरासत को पूरे गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन बने और आज भी देखें तो इतिहास के महान खिलाड़ियों में उनका नाम गिना जाता है।
1: That's right, Vaishnavi, and we all know that following his footsteps, a new generation of Indian stars has taken the world by storm, including D. Gokesh, who became the youngest ever world chess champion, R. Pragyananda, Arjun Erigaisi, Vidit Gujarati, Pentala Harikrishna, and Koneru Hampi, one of India's most successful women chess players. Their achievements have not only brought international recognition to India, but have also inspired countless young minds to embrace the game with passion, discipline, and determination.
0: Saira, अगर देखा जाए तो मुझे चेस इसीलिए पसंद है क्योंकि ये सबके लिए है। इसमें उम्र, भाषा या किसी देश की सीमा नहीं होती है। जरूरत है तो बस एक शतरंज के बिसात खेलने के लिए एक साथी और कुछ नया सीखने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु मन की।
1: That's right, and sometimes I have seen chess aficionados, Vaishnavi, जिनको साथी की जरूरत नहीं होती, वो अकेले ही दोनों तरफ से खेल रहे होते हैं, you know, challenging your own self, you know. So I think that is another quality that probably people inculcate while playing chess. And chess promotes fairness, inclusion, mutual respect, and friendly competition. Every move teaches us to think before we act, a lesson that's valuable both on and off the board.
0: श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र का भी मानना है कि शतरंज जैसे खेल लोगों के बीच की दूरियां कम करते हैं, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देते हैं, शांति का संदेश फैलाते हैं और अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं।
1: So well, here's a quick question for our listeners. If you could choose one chess piece to represent yourself, which one would it be? वैष्णवी, आप कौन सा चुनेंगी?
0: सर, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो नाइट यानी घोड़े को चुनूंगी क्योंकि वह सबसे अलग तरीके से चलता है और अपनी अनोखी चालों से हर किसी को चौंका देता है।
1: Well, great choice, and I would probably go with the queen. Powerful, versatile, and always ready to take on new challenges.
0: वाह, सही कहा आपने सायरा। हर मोहरे की अपनी एक अलग पहचान और खासियत होती है। श्रोताओ, अब आपकी बारी है। जरा सोचिए, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी से मेल खाने वाला एक शतरंज का मोहरा चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? अपने जवाब पर जरूर सोचिए क्योंकि यही खेल को एक नए नजरिए से समझने का मजेदार तरीका है।
1: That's quite an interesting exercise that you've given probably to our listeners. And well, on this International Chess Day, let's celebrate not just a game, but a timeless tradition that sharpens our minds, inspires creativity, and reminds us that every great victory begins with a single thoughtful move.
0: श्रोताओं, चाहे आप अपनी पहली ओपनिंग सीख रहे हो या भविष्य के शतरंज चैंपियन बनने का सपना देख रहे हो, एक बात हमेशा याद रखिए, हर महान खिलाड़ी कभी न कभी एक शुरुआती खिलाड़ी ही था।
1: That's right. So yes, here's wishing everyone from the team of Parikrama and AIR a very happy International Chess Day. Keep thinking, keep learning, and may every move you make lead you closer to success.
0: सायरा, अब अगर आगे मैं इसी प्रेरणादायक विचार के साथ यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और शतरंज भी हमें यही सिखाता है। इसलिए जाते जाते एक प्रेरणादायक कथन सुनिए। हर शतरंज का मास्टर कभी ना कभी एक शुरुआती खिलाड़ी ही था।
1: Before we proceed to our correspondents who are waiting with the interesting stories, let's tell a very important announcement that in our bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on income tax return filing, awareness, convenience, and timely compliance with Sharad Kohli, Chartered Accountant and Tax Expert, Ashwini Rana, Banking Expert. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, you simply have to dial telephone numbers 011-2331-0481, another number 011-2371-7117, 2371-7106, and another number 2331-4444. This you can obviously listen from 9:30 p.m.

0: onwards tonight. And you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044 or post your questions on X with hashtag AskAIR.
1: श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
0: Yes, so we are starting our parikrama from up north, from the heaven on earth in Jammu and Kashmir. The Chinar Book Festival is underway at the Sher-e-Kashmir International Conference Center in Srinagar, entering its third day today. The 9-day festival organized by the National Book Trust India under the Ministry of Education in collaboration with the District Administration Srinagar and the National Council for Promotion of Urdu Language will continue till 26th of July.
2: More than 200 publishers from across the country are participating in the festival, showcasing books in English, Urdu, Kashmiri, Hindi and several other Indian languages. The event brings together readers, writers, publishers, artists and literary enthusiasts through book exhibitions, author interactions, literary discussions, workshops, storytelling sessions and cultural performances. The festival also features special Urdu literary sessions, mushairas and an innovators meet, showcasing student innovations from leading educational institutions in Jammu and Kashmir. The major highlight this year is the release of 24 bilingual books developed through the Gojri Translation Workshop held during 2025 edition of the festival. The event also sees the launch of first set of novels developed under the Rajtarangni Samvad initiative. Besides the release of Tea of Seven Bridges, an English translation of Gauri Shankar Raina's Saat Palon Ka Shahar, and an Indian Muslim Speaks by Dr. Hafizur Rahman. The festival has been conceived as a platform to encourage reading habits among the youth while providing opportunities for students to interact with eminent authors, scholars, artists and innovators from across the country. Students from different districts of the UTR participating in various literary and educational activities during the festival. More than 800 artists, writers, performers, curators and literary personalities are expected to take part in the 9-day event as it aims to celebrate India's linguistic and cultural diversity while providing a platform to the local talent as well. Students, book lovers and general public from across the UT have been invited to visit the festival as it is being described as a celebration of books, ideas, language and culture aimed at promoting reading among people of all age groups. For Parikrama, this is Ishfaq Shah from Srinagar.
1: और श्रीनगर से अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार के भागलपुर में कृषि वैज्ञानिकों ने एक अनोखा ऑर्गेनिक हाइड्रोजेल तैयार किया है जो कम पानी में भी किसानों के लिए सिंचाई की समस्या का समाधान कर सकता है। सारा, इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या है कि ये भारत सरकार ने इसे आविष्कार को पेटेंट भी कर दिया है। और अधिक ब्यौरा के साथ चलते हैं हमारी संवाददाता के पास।
3: आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत तो हम सब ने खूब सुनी है। इसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है भागलपुर स्थित बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। यहाँ के वैज्ञानिकों ने आम की गुठली से प्राकृतिक हाइड्रोजेल तैयार किया है जो कम पानी में किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह बताते हैं कि जल्द ही इस हाइड्रोजेल का खेतों में परीक्षण किया जाएगा।
4: तो गुठली का मतलब गुठली के अंदर जो सीड होता है ना, सीड कर्नल उसे बोलते हैं, तो उससे हमारे वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजेल बनाया। इसकी खासियत यह है कि जो हाइड्रोजेल है, जो उसका टुकड़ा हाइड्रोजेल का है, जिस साइज का रहेगा उससे करीब 400 गुना अधिक पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और उसको फिर जब मिट्टी में आप जहां रखेंगे तो वो पानी धीरे धीरे रिलीज कर देता है। यानी जहां सूखा है तो सूखे में कहां नमी अगर करना है, बारिश नहीं है, तो हम इसका उपयोग कर सकता है। अब इसको हम फील्ड में जितने भी ऑयल सीड्स हैं, जो तिलहनी फसल है, उसके ऊपर भी हो सकता है पूरे भारतवर्ष में एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम लोग आगे चलाएं।
3: दक्षिण बिहार के कृषि प्रधान जिलों में जहां मानसून की मेहरबानी अक्सर कम होती है, वहां ये हाइड्रोजेल किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। उम्मीद है प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर ये हाइड्रोजेल बारिश की बेरुखी में किसानों के चेहरे पर शिकन रोकने में मदद करेगा। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: And now we head towards down south to God's own country, Kerala. Well, Vaishnavi, abhi to dekha jaye, Onam mein almost ek mahine se bhi zyada hai, which is of course Kerala's biggest festival. But many of the celebrations and traditional rituals leading up to the festival have already begun. One of the most unique among them is the famous Aranmula Valasadhya in Pathanamthitta district. And let's hear more about this tradition from our Thiruvananthapuram correspondent.

0: The famous Aranmula Vallasadhya, one of Kerala's most unique temple traditions, has begun at the historic Sri Parthasarathi Temple in Aranmula, Pathanamthitta district. The 60-day festival was inaugurated on Sunday. Vallasadhya is a special ritual offering made by devotees to Lord Parthasarathi. It is organized by Palliyoda Seva Sangham in association with the Travancore Devasam Board. The feast is mainly prepared for the oarsmen of the traditional snake boats known as Palliyodams, who arrive from villages along the banks of the river Pamba. They are welcomed ceremoniously at the temple before entering the temple premises. This feast is regarded as the world's largest vegetarian temple feast. More than 60 traditional dishes are served on plantain leaves, including paripa, pulisheri, kalan, aviyal, and many other Kerala delicious. During the meal, the oarsmen sing traditional vanjipata, the boat song, and joyfully ask for different dishes which are served without refusal. The celebrations begin with the Thiruvona Thoni, a Garuda face ceremonial boat carrying rice, vegetables, and other provisions for the feast through the river Pamba. The procession, accompanied by several Palliyodams, marks the beginning of the Vallasadhya season. This year, Vallasadhya will continue for 60 days, filling Aranmula with rhythm of snake boats and traditional boat songs until September 16. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: श्रोताओ, हाल ही में लिथुआनिया में आयोजित 37वीं इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत ने 4 मेडल जीते, जिनमें 1 स्वर्ण और 3 रजत मेडल शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को उनकी शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। आज मुंबई के होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में इन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रस्तुत है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: The Indian team comprised Bhavya Gunwal from Haryana, who won the gold medal, and Saumil Maiti from West Bengal, Nishit Kalani from Rajasthan, and Anmol Kumar from Punjab, who won silver medals. To tell us more about the challenges of serving on the competition jury, we have with us Dr. Anupama Runad, one of the two leaders who accompanied the team.
3: For us, it's a different pressure because we have to give the best to the students so they can understand what is being asked and attempt. So the subject areas covered were very vast. The problems were very different for each question. So attempting 100 questions is a big feat in 6 hours. And students also enjoyed.
2: Now, let us listen to Bhavya Gunwal, the sole gold medalist from the Indian team, who has an interesting take on the experience.
4: The point is not that I am the sole gold medalist from the country. The point is like everybody of us got medals, and that is such a huge feat for the country, for our teachers, for HBCSC, for our parents.
2: With this remarkable success at the 37th International Biology Olympiad, India has proved that it can perform equally well in both theory and practicals, reaffirming its growing stature in the field of science. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
1: और मुंबई से आपको ले चलते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा में मॉनसून के दौरान पौधारोपण का काम जोर शोर से चल रहा है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से।
5: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने और वन संरक्षण को मजबूत बनाने तथा पौधारोपण अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वन महोत्सव पर पौधारोपण केवल संख्या तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पौधे का संरक्षण और नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायतों, शहरों, स्थानीय निकायों, नगर परिषदों तथा अन्य सरकारी परिसरों में पौधारोपण के लिए उपयुक्त स्थान पहचान कर व्यापक स्तर पर पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि लगाए गए सभी पौधों और पेड़ों की जियो टैगिंग कर उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाए। जिन सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में पौधारोपण किया जाए, वहां उनके रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी भी तय की जाए। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
1: और सर, आप चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की ताजा हलचल। शुरुआत करते हैं फीफा से। कल रात काफी रोमांचक मैच रहा और स्पेन ने आखिरकार फीफा विश्व कप अपना खिताब जीत ही लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन ने फेरिन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई थी।
6: That's right, everybody was probably, you know, waiting, and in fact,

0: आई हैव फ्रेंड्स इन केरला हु सेड कि केरला में जो फ्रेंजी होती है फुटबॉल की उसकी वजह से आज स्कूल्स बंद कर दी गई बिकॉज पीपल न्यू दैट वुड दे वुड बी अप वाचिंग द मैच लेट इन टू द नाइट एंड वेल द फ्रेंजी इज नाउ ओवर विद स्पेन विनिंग द कप. Moving on to some news from the world of business, well, benchmark domestic equity indices ended on a negative note today. Sensex declined 443 points or 0.6% to close at 77,709, while Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: हर तारीख अपने साथ कुछ ऐसे नाम लेकर आती है जिन्होंने अपने विचारों, संघर्ष, सृजन और समर्पण से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी. आइए 20 जुलाई से जुड़े ऐसे ही कुछ महान व्यक्तित्वों को याद करें और उनके जीवन से प्रेरणा लें. श्रोताओं, जब भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की चर्चा होती है तो भगत सिंह के साथ एक और नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है. आइए याद करते हैं उस अमर क्रांतिकारी को, बटुकेश्वर दत्त. बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ बुलंद संदेश दिया था. उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि भारतवासियों को की आवाज को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना था. उन्होंने लंबा कारावास सहा लेकिन देशभक्ति के अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटे. उनका साहस आज भी युवाओं को प्रेरित करता है.
0: Next on our list, we are remembering Pandit Samta Prasad today on his death anniversary. We all know that he was a classical musician and tabla player from the Banaras Gharana. In fact, he played the tabla in many Hindi films as well, Meri Surat, Teri Aankhe, and of course in Shole with the film composers R.T. Burman and Bapi Lahiri, who actually were his disciples. He was the son of Hari Sundar, also known as Bacha Mishra. His grandfather was Jagannath Mishra, and his ancestors included Pratap Maharaj, also known as Godai Maharaj. He was awarded the Sangeet Natak Academy Award in 1979, India's National Academy for Music, Dance and Drama, and the Padma Bhushan, which is the third highest civilian honor given by the Government of India in the year 1991.

0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए न्यायपालिका के दरवाजे खोलने वाली पहली महिला कौन थी? हम बात कर रहे हैं अन्ना चांडी के बारे में। उन्होंने भारत की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में सेवा दी थी। उन्होंने ऐसी सेवा ऐसे समय में न्यायपालिका में अपनी पहचान बनाई जब इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम थी। वे केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी बनी। महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।
1: Today we are remembering an actress and a singer, and she was, you know, somebody who actually ruled the hearts of Indian cinema. We are talking about Geeta Dutt. Of course, we know that she found particular prominence as a playback singer in Hindi and Bengali cinema both. She is considered one of the best playback singers of all time, in especially Hindi films. She also sang many modern Bengali songs in the non-film genre. And agar unki baat ki jaye, to obviously we all know that she later married Guru Dutt also. Khas tarah se Guru Dutt ki filmon mein unhone bahut se yaadgar gaane gaaye.
0: सायरा, अगर मेरे से पूछा जाए उनके फिल्मों के बेहद खूबसूरत गीत, तो उनमें से था वक्त ने किया क्या हंसी सितम, बाबूजी धीरे चलना और मेरा सुंदर सपना बीत गया। और भी काफ़ी गीत हैं, लेकिन अब फिलहाल हम उनके कुछ चुनिंदा गीत आपके लिए लेके आए हैं श्रोताओं, आइए सुनते हैं।

0: எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।

लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया।

0: प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानून निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की आठवीं बैठक आज से हो रही है। दो दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசையில் நிகழ்ச்சி நிரலை கேட்கும் முன்
2: பர்சனல் லோன் ஆஃபர்
3: மறுபடியுமா? இதையும் பிளாக் பண்றேன்.
2: துபாய்க்கு ஃப்ரீ ட்ரிப்,
3: இதையும் பிளாக் தான். எவ்வளவு நம்பர்ஸ் தான் பிளாக் பண்றது?
4: போன்ல பிளாக் பண்றது மட்டும் ஸ்பேம் ஸ்டாப் பண்ணாது. ஒவ்வொரு தடவையும் புது நம்பர்ல இருந்து கால் வரும்.
3: அப்ப நான் என்ன பண்றது?
4: கால் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு ட்ராய் டிஎன்டி ஆப்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. கேட்டகரிய செலக்ட் பண்ணுங்க, பேங்கிங், டிராவல், இன்சூரன்ஸ். அப்புறம் சப்மிட் பிரஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும்.
3: இதனால எல்லாருக்கும் ஸ்பேம் கம்மி ஆகுமா?
4: ஆமா, ரிப்போர்ட்ஸ் வந்த உடனே ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க.
5: ஜஸ்ட் பிளாக் பண்ணாம ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. ட்ராய் டிஎன்டி ஆப் இப்பவே பிளே ஸ்டோர் இல்ல ஆப் ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ரிப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
6: PM ஜெய் அப் கரீபோ கி ஜெய் பன் கயி ஹே.

0: हैं कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और जल संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए किन किन उपायों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
1: वर्षा जल संरक्षण के सोच के साथ 22 मार्च 2021 विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी। इसका संदेश था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां और जब भी बारिश हो उसे वहीं संजोएं। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान के अनुभवों के आधार पर की गई थी। उस समय देश के 256 जिलों के 1592 जल संकट ग्रस्त ब्लॉकों में वर्षा जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जलागम विकास, जलाशयों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके बाद हर वर्ष अभियान को नई थीम और नए फोकस के साथ आगे बढ़ाया गया। वर्ष 2021 में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर जोर दिया गया। जल स्रोतों की जियो टैगिंग, वैज्ञानिक योजना और जन जागरूकता अभियान चलाए गए। इसके बाद 2022 में पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन, भूजल पुनर्भरण, आर्द्र भूमि और नदियों के संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई। साल 2023 में अभियान का मुख्य उद्देश्य पेयजल स्रोतों को टिकाऊ बनाना और जल संकट वाले 150 जिलों में भूजल संरक्षण को मजबूत करना रहा। वहीं 2024 में अभियान की थीम रही नारी शक्ति से जल शक्ति। इस दौरान महिलाओं की भागीदारी से जल स्रोतों की सफाई, तालाबों की गाद निकालने, बंद बड़े बोरवेलों को भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग में लाने और स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण जैसे अनेक कार्य किए गए। समय के साथ सरकार ने महसूस किया कि केवल सरकारी योजनाओं से जल संरक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। इसी सोच के साथ 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत से जल संचय जन भागीदारी 1.0 की शुरुआत की गई। इस पहल का आधार 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत रखे गए, कम्युनिटी, CSR और कॉस्ट, यानी समुदाय की भागीदारी, संस्थागत सहयोग और कम लागत वाले स्थानीय समाधान। इस अभियान के तहत कम लागत वाले भूजल पुनर्भरण ढांचे तैयार किए गए, बंद पड़े बोरवेलों को फिर से उपयोग में लाया गया और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जल संरक्षण के उपाय अपनाए गए। इसका लक्ष्य कम से कम 10 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना था, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 के दौरान देश भर में 27 लाख से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं तैयार किए गए। इस सफलता के बाद 1 जून 2025 को जल संचय जन भागीदारी 2.0 शुरू किया गया। इस बार विशेष ध्यान उन जिलों पर दिया गया जहां भूजल का दोहन अधिक हो चुका है या जहां स्थिति गंभीर मानी जाती है। इस चरण में 31 मई 2026 तक कम से कम 1 करोड़ भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाएं बनाए जाने की सूचना मिली है, जो निर्धारित लक्ष्य से 50% से अधिक है। हालांकि इन संरचनाओं का भौतिक सत्यापन और फील्ड वैलिडेशन अभी किया जा रहा है। अब इसी अभियान को और व्यापक रूप देते हुए कैच द रेन की शुरुआत की गई। इसमें जल संचय जन भागीदारी और कैच द रेन को एक साथ जोड़ते हुए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल संग्रहण और जन भागीदारी को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्रोताओं, किसी भी अभियान की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं बल्कि उसके जमीनी प्रभाव और लोगों की भागीदारी से तय होती है। यही वजह है कि कैच द रेन अभियान को केवल सरकारी योजनाओं के रूप में नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। आइए अब समझते हैं कि कैच द रेन अभियान में जन भागीदारी की क्या भूमिका है और इसे प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं।
1: इस अभियान में पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, महिला समूहों, युवा संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर समाज की साझा जिम्मेदारी बने। अभियान के तहत लोगों से अपने घरों, आवासीय परिसरों और कार्यस्थलों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने की अपील की गई है। साथ ही जहां संभव हो रिचार्ज पेट और रिचार्ज शाफ्ट बनाए जाएं, बंद पड़े वेलों को भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग में लाया जाए, तालाबों और जलाशयों से गाद हटाकर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाए तथा जल संरक्षण वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। इन छोटे छोटे प्रयासों को मिलाकर बड़े स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अभियान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रखा गया है। जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम किया जा रहा है। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और अलग अलग योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा। अभियान के तहत विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका

0: जीविका मिशन ग्रामीण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप तथा जलाशयों की मरम्मत नवीनीकरण और पुनर्स्थापन कैंपा वित्त आयोग अनुदान और विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इससे जल संरक्षण के कार्यों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। अभियान को मजबूत बनाने में जल शक्ति केंद्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के विभिन्न जिलों में स्थापित ये केंद्र जल संरक्षण से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, स्थानीय प्रशासन और समुदायों को तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं तथा जल संरक्षण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं। इससे लोगों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुँचाने और स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना बनाने में सहायता मिल रही है। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, कैच द रेन अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें सरकार और समाज दोनों की साझी भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की इसी सोच के अंतर्गत विभिन्न विभागों, स्थानीय संस्थाओं और आम नागरिकों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर आकाशवाणी से साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण ने अभियान में जन भागीदारी और सरकार के दृष्टिकोण के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत अमृत सरोवर या अटल भूजल योजना, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जाम्पल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जाम्पल्स, देश भर में अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक।
1: श्रोताओं, ये स्पष्ट है कि कैच द रेन अभियान केवल वर्षा जल संचयन का कार्यक्रम नहीं है, ये जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का एक व्यापक प्रयास है। पिछले कुछ वर्षों में जल शक्ति अभियान से लेकर जल संचय, जन भागीदारी और अब कैच द रेन तक की यात्रा यह दिखाती है कि सरकार जल संरक्षण को लेकर एक योजना के रूप में नहीं बल्कि लोगों की भागीदारी से जुड़े राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls on your market related queries, but do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phone. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.

0: आइए श्रोताओं एक नजर डालें आर्थिक सुर्खियों पर.
1: The benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 450 points. Nifty settles at 24,239. India's core industries register growth of 5% in June this year and global crude oil prices decline.
0: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 400 अंकों से अधिक बढ़ा. निफ्टी 24,239 पर बंद हुआ. भारत के प्रमुख उद्योगों में इस साल जून माह में 5% की वृद्धि दर्ज की गई और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.

0: Before we proceed, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: And Shrutaon, ab aaiye ruk karte hain ki aur jante hain ki aaj din ke antaral mein hamare gharelu share bazaar ne kaisa प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 443 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 77,709 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंक यानी लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,239 पर आ गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
0: The benchmark domestic equity indices ended on a negative note today after a choppy trading session. The Sensex shed 443 points or 0.6% to close at 77,709. The Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.6% and the small-cap 100 index added nearly 0.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम ट्रेंट 3%, पावर ग्रिड 1.8% और एनटीपीसी तथा भारती एयरटेल 1.5% से अधिक बढ़े। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक 5.5%, एचडीएफसी बैंक 5% से अधिक और मारुति के शेयर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks jumped 3%, utilities rose 1.7% and power added 1.5%. In contrast, private banks dropped 2.1%, top 10 bank index slipped 1.9% and financial services lost 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,226 advanced, 2,039 companies declined and 249 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.45 रुपए पर बंद हुआ। शशिर, हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने आज मार्केट में एक निराशा ला दी है और मार्केट अंततः ग्रीन जोन में बंद हुआ।
2: बाजार में देखिए, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उनके शेयरों में उछाल देखने को मिला। निजी बैंक जो थे उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये बहुत ही कहते हैं कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। अगर अब बीते कुछ दिनों में जो हम प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है। निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा। तो शायद एक ये कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी। और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे, 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा, सेंसेक्स गिरा,

0: उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था
1: जी,
0: वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है
1: जी,
0: उसका योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा
1: जी।
0: तो ये आज के बाजार में, और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है तो वहां पर हमने बढ़ोतरी देखी। तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो आम तौर पे कहते कि इसमें बहुत तेजी भी आती है और बहुत गिरावट भी आती है, आज के गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े।
2: राइट सुशील जी, वी आर टॉकिंग ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स ऑलमोस्ट 5% ऑफ अ डिफरेंस। इफ यू लुक एट द पीएसयू बैंक्स जंप 3% एंड द प्राइवेट बैंक्स ड्रॉप 2.1%, ऑलमोस्ट अ 5% कॉन्ट्रास्ट। What accounts for that?
0: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, where we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in the net profit. Even their net interest profit, net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the kind of growth in the net profit, and at the same time, one of the big private sector bank is also riddled in the controversy. That is also giving some kind of negative impression about the private sector banks, and that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
2: Another point, Shishirji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss, here is the first caller from Delhi, Premjeet. Premjeet ji.
3: Namaskar, Shishir saab.
0: Namaskar.
3: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया तो मैंने ये एक्सक्यूट किया। सर मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, या जिसको आप AI कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट है, या हम उन पे हावी रहेंगे? सर बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, पर विस्तार आप ही दे सकते हैं।
0: प्रेमजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है, और ये मुद्दा, ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं। पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं आईटी सेक्टर्स की, जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं, उनका क्या होगा। तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये है, जो हमने 1991 में देखा था जब कंप्यूटर आया था, तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है, लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने। यही पक्ष जो है वो आप AI के लिए भी कह सकते हैं कि AI के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता है, हमारे लिए मौके बनते हैं। आपका यह है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या AI हावी होगा? हम अगर हावी होने देंगे तो AI हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते ना कि तकनीक के को हम अपना मददगार बनाए, तकनीक को अपना मालिक ना बनाए। तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और दूसरा जो प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं आईटी सेक्टर के, जो इंफोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी या एनविद्या के जो CEO हैं, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि AI को लेकर के डरने की जरूरत नहीं, बल्कि AI को साथ लेने की जरूरत है। इससे हमारा आपका कौशल बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर कर्मयोगी कह सकते हैं, आप कर्मवीर कह सकते हैं, उसके तौर पे हम आएंगे।
1: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद हैं। और ये देखिए, कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है DR आचार्य की।
4: हाँ
1: जी, अपना सवाल पूछिए महोदय।
4: हाँ सर, मैडम, मेरा NPS में कुछ पैसा लगा है, ठीक है, तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था, इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया,

0: किसी पैसा लगाना ठीक होगा? और
1: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है। जब आप सेवानिवृत्त होंगे वहाँ पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे उससे आपको एक पेंशन मिलेगा। आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। सरकारी क्षेत्र में भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज़ रोज़ के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक जब आपकी मैच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है और अब 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, चूँकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है। आप विकल्प देते हैं और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज़्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए।
2: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ किसी में हमें पैसा लगाना चाहिए। और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो लड़ाई चल रही है तो वहाँ काफ़ी क्षति हो गई है कई देशों में, रूस, यूक्रेन, ईरान और अदर्स अरब क्षेत्रों में। तो आने वाले समय में यहाँ काफ़ी जो काफ़ी बिल्डिंगें दोबारा से भरेगी तो इस क्षेत्र में काफ़ी स्कोप हो जाएगा। तो इसमें क्या बेनिफिट आगे हम साथ रास्ता जो है।
1: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की ज़रूरत होगी। देखिए, ये बहुत ही दूर की सोच है। अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहाँ पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहाँ किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, युद्ध शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो हैं वो बन सकते हैं।
4: नेक्स्ट कॉलर इज राजीव फ्रॉम दिल्ली। राजीव,
2: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से, आगे बढ़ते हैं। निश्चित,
4: या मूविंग ऑन, द अल्ट्राटेक सीमेंट टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज बाय 15.8% ईयर ऑन ईयर to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
2: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार और यूरोपीय शेयर बाजार में क्या हलचल है। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लुढ़के। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा। उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा। प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांकों की अगर बात करें तो मिले जुले रुख के साथ ये कारोबार करते नजर आए। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 0.3% और जर्मनी का डैक्स 0.2% बढ़ा। वहीं लंदन का फुटसी 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से। जी महोदय, अपना सवाल पूछिए, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
5: मार्केट मंत्रा, जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, दो छोटे छोटे सवाल हैं।
2: जी,
5: पहला तो ये कि आज एक वो पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कुछ फॉरेन किसी का उसको पार्टनर बनाने का प्लान के बारे में पढ़ा मैंने, तो इसमें पहली बात तो ये कि बाहर से क्यों जरूरत पड़ रही पार्टनर की, और दूसरा इसमें इनकी मंशा क्या है पंजाब नेशनल बैंक की, ये जानना चाह रहा था। और दूसरा ये कि ये अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल, मतलब ये पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है।

0: ये जानना चाहता था। थैंक यू।
1: पहले अगर अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े हैं, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए एक चिंता का विषय ज़रूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी, अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपये पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपये का चाल भी देखा है। तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी, कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है, तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा।
2: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा, ये बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वार्षिक आधार पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई। शिशिर जी, ये एक अच्छी बात है कि ये बढ़ोतरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी।
1: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी हमारे आर्थिक सूचकांक हैं, अगर हम बात करें GDP, हम बात करें महंगाई दर की और अब जो है ये प्रमुख उद्योगों की बात करें, इसके आधार वर्ष का बढ़ना, इसलिए आधार वर्ष का तय, नए सिरे से तय होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वास्तविकता के करीब होते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि 2011-12 पहले आधार वर्ष था, अब 2022-23 है, तो अगर आप GDP का भी देखेंगे तो 2022-23 हो गया है, WPI का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है, CPI की हम बात करें वो 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष का बढ़ना एक, दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ है, और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, ये जो आंकड़े आते हैं, ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है, यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी।
3: Right, and our next caller is Kanta from Gurugram. Kanta.
4: जी नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
4: मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये सीनियर सिटीजन स्कीम में मैंने बैंक में पैसे लगाए हैं, हाँ सर?
1: जी जी।
4: तो इसको जैसे PPF का पैसा तो सरकार देती है, तो इसको बैंक देगा या सरकार देगी? और ज्यादा हो जाए तो बैंक डूब जाए तो फिर वो मर जाएगा पैसा, ज्यादा करवा दिया तो?
1: कांता जी, दो बातें हैं, जो आप बैंक में पैसा रखती हैं वो जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है, उस पर ब्याज भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं, वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए, तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5 लाख रुपए तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है एक समय में, और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज दर है उससे कहीं ज़्यादा ब्याज दर डाकघर में है, और वहाँ पर फ़ायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
2: शिशिर, दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
5: हाँ सर जी, मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारे को इशू हो जाएंगे जो उसके फिजिकल शेयर?
1: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है, आपके पास जिस किसी कंपनी के

0: शेयर हैं, वहाँ के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा, इसमें से कोई भी एक जानकारी दे करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
1: शिशिर जी, वन क्वेश्चन which we were discussing earlier on, if you look at the market situation, domestic market situation, and also the results which have been pouring in over the past couple of days now, so given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
0: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are asked is there that why there the number is so encouraging? Why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending. One of the reason is because of the market situation. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good in the domestic sector, that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Just on 15th of this month, we were going through the export data, and there we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means the companies are able to sell their produce outside. Now the concern here is that the cost of production has slightly gone up, and that is why the profitability is of course on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been has been normalized, so all these things are contributing in that. So the number one is export number, and then the consumption number.
2: Right. और इस बीच बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं। टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते
3: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी पूछा
0: कौन सी पॉलिसी आपने, टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही?
3: संतोष, संतोष,
0: संतोष पॉलिसी।
3: हाँ, पोस्ट ऑफिस का है, संतोष पॉलिसी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो या।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है।
3: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है, तो मैं बोले 41। तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको, 60 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा। तो सर वो 2 लाख का इंश्योरेंस बता था प्रति, मगर 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए।
0: ओके,
3: 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या, जीएसटी वीएसटी वो तो कट रहा है क्या उसमें? पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, उसमें एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है, यही मैं जानकारी चाहते हैं। और एक और सवाल है
0: जी,
3: जैसे टीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं
0: जी,
3: उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है, दोनों में जानकारी चाहिए सर।
0: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोलें, चाहे आप बैंक में खोलें या डाकघर में खोलें, ब्याज की दर एक होती है, क्योंकि पीपीएफ को बैंक नहीं चलाता, बैंक वहां पर एक तरीके से आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराता है कि आप हमारे यहां आकर के अकाउंट खोल लीजिए, डाकघर में भी आप खोल सकते हैं, तो उसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि जो आपने जिस पॉलिसी की बात की, जीवन बीमा पॉलिसी की बात की, पहली बात की देखिए, व्यक्तिगत तौर पर जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है, तो उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। हाँ, यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ता है। रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है, वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं, और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसी हैं, उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है।
1: Yeah, moving on to crude now. The global crude oil prices reversed their early gains today after Iran's foreign ministry said negotiations with the U.S.

0: could be pursued based on national interest. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5% down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishirji, on crude.
1: The problem we are facing at this moment is there's still a lot of uncertainty. Mm-hmm. Sometimes you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. Mm-hmm. On the other side, when you hear US president, he has his own way of explaining the thing. So at this moment, today, you will see, I mean, as you just mentioned, that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
0: 0.8%.
1: Yes. 0.8% and it was $87 a barrel. Mm. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80. Then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
0: Right. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.5% up at 1,42,390 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% up at 2,19,670 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona aadhe pratishat se adhik badhkar 1,41,754 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha aur september anubandh wali chandi 1.3% ki badhat ke saath 2,19,233 rupees par chal rahi thi. Shishir ji, sanshipt tippani chahungi aapse sone aur chandi ke bhav par.
1: Dekhiye, ek dilchasp baat yeh hai ki ladai ke beech mein sone chandi ke bhav mein giravat aa rahi hai. Ye kai baar logon ko hairan bhi kar raha hai, lekin आप इसको सीधा जोड़िए डॉलर से. जब जब डॉलर मजबूत होगा, सोना उतना ही ज्यादा कमजोर होगा.
0: राइट
2: शशि जी, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारे तमाम कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी धन्यवाद.
0: थैंक यू सो वेरी मच शशि जी. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239. इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन. एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. आई एम निशित कुमार अलॉन्ग विद माई को एंकर प्राची प्रिया saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कर कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत

प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारी सी सिफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों

पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की आठवीं बैठक आज से शुरू हो रही है। दो दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहाँ चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के

इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को यह कहते

सहमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि NCS परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र MCC स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन

राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉ सतीश पूनिया और प्रकाश गवड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाही रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को

0: आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: நேரம் 8:15.

0: पैर को पहुंच रहे हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ஸ்பெக்ட்ரம் கோல்டு அலைவரிசையில் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए

0: गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसिस फेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनो में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
2: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग

0: श्रीते ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा।

लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में संधि लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार फरहत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओ, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0111-2331-0481-0111-2331-4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है?
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेज होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूँ आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी जरूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फराज अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फ़ोन करेंगे और उनके मन में कोई यार बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोग जहाँ पर वो अटक गए हैं, जहाँ उनको डाउट है।
0: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
1: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है एक टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज़ से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपये वहाँ शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपये तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते। कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे

0: है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो
1: जी
0: आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं, तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
1: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहद आपने। देखिए, ये जो पांच मैंने इनकम्स बताई थी, उन पांच इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं, तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना, तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज जो मैं जरूरी बताना चाहूंगा, एक फॉर्म 26AS होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी अपनी पूरी इनकम से, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है। तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं, प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पर मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए, ये सब। अब देखिए, इसमें जरूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने जरूरी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन और ये फिगर कहां से लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
1: बिल्कुल। अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और FD पर अगर TDS कटता है तो ITR इसमें कैसे दिखाएंगे?
2: देखिए कि वैसे तो एक आपका TDS जो है FD के ऊपर वो 40,000 रुपये तक, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन 50 की लिमिट है। लेकिन उसके बाद जो TDS है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं।
1: जी, और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित झा। जी अमित जी।
3: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार
3: सर, कोहली सर का नमस्कार। सर
0: नमस्कार अमित जी। नमस्कार
3: सर, मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी।
3: हाँ सर, सर मैं, मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर, मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो XYZ।
0: जी
3: तो सर, तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ।
0: जी
3: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर? धन्यवाद सर।
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है, हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और बिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है, तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। परंतु अगर आप वो जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई TDS कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है, डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल जैसा फारद ने शुरू में बताया था कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है, तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें

0: तो उनको फिर जरूरी नहीं। आप जो बता रहे हैं अमित, अगर आपका 12 लाख रुपए से कम का है तो आप, 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं ऑप्शन।
1: शरद जी, छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए आईटीआर में कोई छूट है क्या?
0: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन को नॉर्मल, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं, और एक सीनियर सिटीजन के लिए ये होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स पे करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस की वो बिजनेस इनकम है। कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ के हैं उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं। और मैं तो आज इस शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं, और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको, आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं, और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फर्क बहुत लंबा दिख सकता है।
1: ये बात एकदम सही कह रहे हैं, हर साल हम लोग भरते हैं लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में संशय रहता है, डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए
0: जी,
1: तो
0: जी। उस चीज़ और में मैं उसी पे आ रहा था। तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सिर्फ ये कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है। आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी
1: जी, एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन जी। मकसूद जी
2: नमस्कार। सर जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
0: जी हुसैन साहब बताइए
2: जी। मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जनसेवा केंद्र चलाता, तो उस पर ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है
0: जी,
2: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 20-25 लाख तक पहुंच जाता है जी, अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताएं सर जी।
0: नहीं, जनसेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब कि वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा, तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी, तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फर्द में ठीक समझ रहा होगा, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको, आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे हैं, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
1: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान जी। रशीद जी
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है
0: जी,
3: तो क्या 12 मतलब 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, तो एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ
0: जी,
3: इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिजिम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर, थैंक यू।
0: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को, पहले आपके मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था 80TTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पस ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया, सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ, उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा, पर आपने बिल्कुल सटीक चीज़ पूछी है, बहुत बढ़िया चीज़ पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि

0: बहुत सारे लोगों के मन में ही होता
1: जी बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या आईटीआर के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
2: नहीं, आईटीआर के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो ज़रूरी हो गया है। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
0: और मैं आपकी इजाज़त हो फरत तो इसमें कुछ अश्विनी इजाज़त दें तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो ऐसे में एक हल निकला है, हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर MSMEs को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में ला के और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। GST भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन GST शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं जब छोटा काम होता है। जैसे जैसे काम बढ़ता है तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
2: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो GST नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको GST की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता दे।
0: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
1: आप लोगों से हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से NP सिंह जी।
3: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा नाम NP सिंह है, मैंने एब्रीवेशन बताई थी नागपुर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
3: शरद जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
0: अच्छा, प्लेजर सर।
3: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर।
0: हाँ जी।
3: एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
0: जी।
3: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है, अनियमितता को छोड़कर ये लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा, आई एम सो सॉरी, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रख सकें।
0: अच्छा,
3: और कौन सी ऑप्शन बेटर
0: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, मैं क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम CAS बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क ये, पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है, पर अब एक डेटा ये कहता है और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है अब की बार, जो जैसा लोग बता रहे हैं। तो न्यू रिजीम उनके लिए है जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शंस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है NPS उसको छोड़ के, बाकी सारी डिडक्शन न्यू रिजीम में हटा दी गई है। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको ये सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम से है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश कर रहा हूं।
1: अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं?
2: मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिज्म और न्यू रिज्म में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिज्म में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे LIC में, NSE में,

0: है, FDI है या इस तरह की, तो वो या PPF है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ।
1: जी नमस्कार।
2: और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक हैं विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं? और मेरा ये प्रश्न है।
3: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, तो वहाँ पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में दो तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम NRI कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये शख्स जो हैं भारत से बाहर ही रहते हैं, पर वो पैसा अपने परिवार को यहाँ पर भेजते हैं। तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है, उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे, उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पर उस व्यक्ति को जो NRI है, उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। अब आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है, तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहां पर भी इनकम है फरहद, वहां पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में एक डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है, जिससे उसको डबल डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था, मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
1: जी अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी NGO चलाते हैं
3: जी,
1: और पिछले 2 साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से NGO को क्लोज करना चाहते हैं। तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
3: देखिए, अगर तो NGO रजिस्टर्ड है और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है, फिर तो भरना पड़ेगा। हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि NGO फर्क दो तरीके के होते हैं। एक NGO होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है, क्योंकि NGO आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं है, आप तो जन सेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है, फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी। पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड NGO हैं, तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं, आपके सवाल से एक बहुत जरूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने 3 साल से फाइल ही नहीं करी,
1: हाँ,
3: तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई, रह गई जाने में अनजाने में। तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया, जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपकी पिछले साल से, 3 साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, 2 साल पुरानी है तो 50%, 3 साल पुरानी तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे, तब आपको सरकार ये इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है, और वो फिर कंपलसरी, जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है, तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह, थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
1: शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश जी। जी प्रकाश जी।
4: भरत जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
3: सर हमारा भी सब प्रेम,
1: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
4: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
3: जी
4: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे क्या कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच में कोई फर्क है, या क्या थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें।
0: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हूँ एडिशनल, वैसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग ITR दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस?
3: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्द होता है किसी की गलतियां निकालना। आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम

0: गलत हेड में डाल दिया और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये होदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, क्योंकि गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियाँ को बयान करने में चला जाएगा।
1: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
2: ऐड करूँगा इसमें एक कि कोली जी, अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती।
0: नहीं, उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है, पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता,
2: नहीं ठीक करता, और वो फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।
0: नहीं नहीं, वो हो जा, मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी, इनकम
2: फिगर गलत है, लेकिन तो, जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप,
0: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं, और फिर वो 26AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर, मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है,
1: ध्यान से भरिए अपनी हर एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए, तो शायद आप गलती करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार
3: पैनल को, नमस्कार सर। पिछले साल जिस यूजर आई डी, जो यूजर आई डी चाहिए होता है, जिस पासवर्ड से हम भरे थे, वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो इसमें लिख के आ रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया,
0: तो
3: अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ, रेगुलर आई
0: टी भरने वाला। तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर, नहीं तो तुरंत मोबाइल पे OTP आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं आप, क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक CP Grams करके वेबसाइट है, उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और CPC बैंगलोर है, उसके फ़ोन नंबर भी हैं, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है, तो CP Grams का एक ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए CP Grams में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं, और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा। या मैं आपको सलाह दूंगा CPC बैंगलोर में फ़ोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फ़ोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
1: जी शरद जी, हमारे पास भी समय बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
4: जी, मैं रवि जवालिया हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो 2-3 साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पे क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर मैं इसे जानना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
0: अरे अरे रवि जी, आप क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का, मतलब आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है आप नहीं भर रहे हैं, तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा। पेनल्टीज बहुत भारी है, मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूं, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले 2 सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
1: और अब थोड़ा सा समय बचा है, तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
0: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फर्क ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न आ रही है आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इंफॉर्मेशन को चेक जरूर कर।
1: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करें, 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए।
1: जी, और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट इनकम

0: index.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया।
1: शुक्रिया।
0: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाज़त। और हमने सीखा आज कि ITR सिर्फ टैक्स का कागज़ नहीं है, ये आपकी आर्थिक पहचान भी है। तो ज़रूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज़ को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति का गठन 2 सप्ताह के भीतर किया जाए और गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। अदालत ने समिति को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बोझ साझा करने के तरीके और व्यवस्था की सिफारिशें करने का निर्देश भी दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल

प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं, जबकि पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: பாரதி. भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की. हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी को सशक्त बनाने का आह्वान किया. उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की. ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता एंड्री बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला. और ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की. अब समाचार विस्तार से. भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हुए जहाज एमवी गोल्डन लियो पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है. मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे. मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल की जान खतरे में डालना और समुद्री आवाजाही तथा व्यापार में बाधा डालना निंदनीय है. मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है. भारत सरकार ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायल भारतीय के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया. राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की अपार संभावनाएं हैं.
1: I am greatly encouraged by the growing cooperation. There is immense potential for collaboration across diverse sectors such as digital technology, artificial intelligence, cyber security, fintech, digital public infrastructure, infrastructure development, renewable energy, advancement at manufacturing, logistics, agriculture, food processing, pharmaceuticals, biotechnology. Indian companies are interested in participating in the development projects of Moldova in energy sector, including solar energy, battery storage, smart grids, green hydrogen.
0: मोल्दोवा की राजधानी किशिनौ में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा.
1: इंडिया आल्सो ऑफर्स गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर मोल्डोवान कंपनीज फॉर ट्रेड एंड बिजनेस. वी रिमेन कमिटेड टू फोस्टरिंग ए ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस एनवायरमेंट. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in India. Your enterprise, vision and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारिसी फैंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था. राष्ट्रपति मुर्मू ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है, क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडियार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे. नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देश भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पनामा के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है. उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा के दौरान हुई चर्चा पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोलेंगी. विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@

0: IR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने उद्घाटन भाषण में बर्नहैम ने कहा कि वे राजनीति को समस्या समाधान पर केंद्रित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनकी नियुक्ति देश के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हो।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: प्रधानमंत्री बर्नहैम ने जनता को संबोधित करते हुए लोगों से राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक कार्यभार संभाला जब चार्ल्स तृतीय ने केयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले केयर स्टारमर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लगाने की घोषणा की है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहया सारी ने कहा कि यह कदम यमन पर लगाए गए प्रतिबंध और हाल में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले के जवाब में उठाया गया है। इस घोषणा से बाबल मंदेब जलडमरू मध्य में व्यवधान की चिंता बढ़ गई है। यह समुद्री मार्ग लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है और वैश्विक व्यापार के लगभग 12% हिस्से के लिए महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब ने अभी तक इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान और अमेरिका के बीच हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के कारण लगातार 9वें दिन भी हमले जारी हैं। अमरीकी हमलों में दक्षिण पश्चिम ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया गया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की जानकारी दी है। ईरान ने बताया है कि अमरीकी हमले के कारण बुशहर प्रांत के दश्ती काउंटी के प्रशासनिक केंद्र खोरमोज में बिजली गुल हो गई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना बलों से संबंधित सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। जॉर्डन ने बताया कि वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान की 3 मिसाइलों को नाकाम कर दिया। इन मिसाइलों का लक्ष्य दक्षिणी जॉर्डन के तटीय शहर अकाबा में अमरीकी सैन्य विमान थे। इस बीच अमरीकी युद्ध विभाग ने पिछले सप्ताह ईरान के साथ संघर्ष में मारे गए 2 अमरीकी सैनिकों की पहचान की पुष्टि की। सेना के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए अमरीकी सैनिकों की कुल संख्या 17 हो गई है। यूक्रेन ने मॉस्को पर 400 से अधिक ड्रोन के साथ हमला किया। यह हमला रूस के द्वारा कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमले के कुछ घंटों बाद हुआ। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोबेव के अनुसार हमले में 10 लोग घायल हुए और कई रिहायशी इमारतों तथा नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज समुद्री डकैती और अन्य अपराधों के आरोप में 2 अलग अलग मामलों में सोमालिया के 44 नागरिकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों के अपराध गंभीर प्रकृति के थे। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष सेट्टी और एचएस प्रणय टीम का हिस्सा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: With this is your Ajayani signing off from the studios of Akashwani Chennai on 100.1 FM Gold, saying goodbye, sayonara, take good care of yourselves. It's time for news from Delhi in a short while.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार

0: बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case.

0: 4233104 81 and 2371 7106, and of course do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi or from your mobile phone. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 450 points. Nifty settles at 24,239. India's core industries register growth of 5% in June this year and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 400 अंकों से अधिक बढ़ा, निफ्टी 24,239 पर बंद हुआ. भारत के प्रमुख उद्योगों में इस साल जून माह में 5% की वृद्धि दर्ज की गई और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.

0: Before we proceed, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking an investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं अब आइए रुक करते हैं कि और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 443 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 77,709 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंक यानी लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,239 पर आ गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.2% की बढ़ोतरी हुई।
0: The benchmark domestic equity indices ended on a negative note today after a choppy trading session. The Sensex shed 443 points or 0.6% to close at 77,709. The Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.6% and the small-cap 100 index added nearly 0.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम ट्रेंट 3%, पावर ग्रिड 1.8% और एनटीपीसी तथा भारतीय एयरटेल 1.5% से अधिक बढ़े। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक 5.5%, एचडीएफसी बैंक 5% से अधिक और मारुति के शेयर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks jumped 3%, utilities rose 1.7% and power added 1.5%. In contrast, private banks dropped 2.1%, top 10 bank index slipped 1.9% and financial services lost 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,226 advanced, 2,039 companies declined and 249 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.45 रुपए पर बंद हुआ। शशिर, हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने आज मार्केट में एक निराशा ला दी है और मार्केट अंततः ग्रीन जोन में बंद हुआ।
2: बाजार

0: बिहार में देखिए जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उनके शेयरों में उछाल देखने को मिला, निजी बैंक जो थे उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये बहुत ही कहते हैं कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। अगर अब बीते कुछ दिनों में जो हम प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है, और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है। निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा। तो शायद एक ये कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी। और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा, सेंसेक्स गिरा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था
1: जी,
0: वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है
1: जी,
0: उसका योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा
1: जी।
0: तो ये आज के बाजार में। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई, और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, तो वहां पर हमने बढ़ोतरी देखी। तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप, जो आम तौर पे कहते कि इसमें बहुत तेजी भी आती है और बहुत गिरावट भी आती है, आज के गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े।
2: राइट शिशिर जी, वी आर टॉकिंग ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, ऑलमोस्ट 5% ऑफ अ डिफरेंस। इफ यू लुक एट द पीएसयू बैंक्स जंप 3% एंड द प्राइवेट बैंक्स ड्रॉप 2.1%, ऑलमोस्ट अ 5% कॉन्ट्रास्ट। What accounts for that?
0: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, where we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in the net profit. Even their net interest profit and net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the kind of growth in the net profit, and at the same time, one of the big private sector bank is also riddled in the controversy. That is also giving some kind of negative impression about the private sector banks, and that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
2: Another point, Shishirji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss here, is the first caller from Delhi, Premjeet. Premjeet ji.
3: Ji, namaskar, Shishir sahab.
0: Namaskar.
3: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया तो मैंने ये एक्सक्यूट किया। सर मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, या जिसको आप AI कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट हैं, या हम उन पे हावी रहेंगे? सर बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, पर विस्तार आप ही दे सकते हैं।
0: प्रेमजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है। और ये मुद्दा, ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं। पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं, IT सेक्टर्स की जो कन्वेंशनल कंपनीज है, उनका क्या होगा। तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये है, जो हमने 1991 में देखा था जब कंप्यूटर आया था, तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है। लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया, उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने। यही पक्ष जो है वो आप AI के लिए भी कह सकते हैं कि AI के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता है, हमारे लिए मौके बनते हैं। आपका ये है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या AI हावी होगा। हम अगर हावी होने देंगे तो AI हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि तकनीक के को हम अपना मददगार बनाए, तकनीक को अपना मालिक ना बनाए। तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और दूसरा जो प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक IT सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं

0: आईटी सेक्टर के जो इंफोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी या एनविद्या के जो सीईओ हैं, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि एआई को लेकर के डरने की जरूरत नहीं बल्कि एआई को साथ लेने की जरूरत है। इससे हमारा आपका कौशल्य बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर कर्मयोगी कह सकते हैं, आप कर्मवीर कह सकते हैं, उसके तौर पे हम आएंगे।
1: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद हैं। और ये देखिए कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है डी आर आचार्य की। जी अपना सवाल पूछिए महोदय।
2: हाँ सर, मैडम मेरा एनपीएस में कुछ पैसा लगा है, ठीक है, तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया, इसमें पैसा लगाना ठीक होगा? और
0: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है। जब आप सेवानिवृत्त होंगे वहाँ पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे उससे आपको एक पेंशन मिलेगा। आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। सरकारी क्षेत्र में भी पहली जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज रोज के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। एक जब आपकी मैच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है और अब 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। चूंकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है, आप विकल्प देते हैं और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए।
1: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, किसी हमें पैसा लगाना चाहिए? और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो ललित लग है तो वहाँ काफी क्षति हो गई है कई देशों में, रूस, ईरान और अदर अरब क्षेत्रों में। तो आने वाले समय में यहाँ काफी जो काफी दिल्ली के द्वारा से बढ़ेगी तो इस क्षेत्र में काफी स्कोप हो जाएगा, तो इसमें क्या बेनिफिट अगर हम प्रसाद रास्ता है?
0: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। देखिए, ये बहुत ही दूर की सोच है, अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहां पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहां किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, युद्ध शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो है वो बन सकते हैं।
4: नेक्स्ट कॉलर इज राजीव फ्रॉम दिल्ली। राजीव,
1: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से, आगे बढ़ते हैं। निश्चित,
4: या मूविंग ऑन, द अल्ट्राटेक सीमेंट टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स For the first quarter of the current financial year, the company's consolidated revenue from operations rose by 15.8% year-on-year to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
1: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार में क्या हलचल है। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2%

0: के। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा। उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा। और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से। जी महोदय अपना सवाल पूछिए कार्यक्रम में आपका।
1: मार्केट मंत्रा जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ, दो छोटे छोटे सवाल हैं।
0: जी
1: पहला तो ये कि आज एक वो पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कुछ फॉरेन किसी का उसको पार्टनर बनाने का प्लान के बारे में पढ़ा मैंने, तो इसमें पहली बात तो ये कि बाहर से क्यों जरूरत पड़ रही पार्टनर की, और दूसरा इसमें इनकी मंशा क्या है पंजाब नेशनल बैंक की, ये जानना चाह रहा था। और दूसरा ये कि ये अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल मतलब ये पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है, ये जानना चाह रहा था। थैंक यू।
2: पहले अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहां पर नहीं करते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े हैं, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी, अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपए पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपए का चाल भी देखा है। तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है, तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा।
0: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा। ये बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वार्षिक आधार पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई। शिशिर जी, ये एक अच्छी बात है कि ये बढ़ोतरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं, एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगे।
2: देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी हमारे आर्थिक सूचकांक हैं, अगर हम बात करें GDP, हम बात करें महंगाई दर की और अब जो है ये प्रमुख उद्योगों की बात करें, इसके आधार वर्ष का बढ़ना इसलिए आधार वर्ष का तय नए सिरे से तय होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वास्तविकता के करीब होते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि 2011-12 पहले आधार वर्ष था, अब 2022-23 है, तो अगर आप GDP का भी देखेंगे तो 2022-23 हो गया है, WPI का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है, CPI की हम बात करें वो 2024 हो गया है। तो आधार वर्ष का बढ़ना एक, दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ, और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, ये जो आंकड़े आते हैं ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है, यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी।
3: Right, and our next caller is Kanta from Gurugram. Kanta.
4: Ji, namaste sir.
2: Namaste.
4: Main ye puchna chahti hu ki senior citizen scheme mein maine bank mein paise lagaye hain. Haan sir.
2: Ji ji.
4: To isko jaise PPF ka paisa to sarkar deti hai, to isko bank dega ya sarkar degi? Aur zyada ho jaye to bank doob jaye to fir wo mar jayega paisa zyada karwa diya ho to.
2: कांता जी, दो बातें हैं, जो आप बैंक में पैसा रखती हैं वो जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है, उस पर ब्याज भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए, तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5

0: लाख रुपए तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है एक समय में, और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज दर है उससे कहीं ज्यादा ब्याज दर डाकघर में है, और वहां पे फायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
1: शिशिर दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
2: सर जी, मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारे को इश्यू हो जाएंगे जी उसके फिजिकल शेयर?
0: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है, आपके पास जिस किसी कंपनी के शेयर हैं वहाँ के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा इसमें से कोई भी एक जानकारी दे करके आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
3: शिशिर जी, one question which we were discussing earlier on, if you look at the market situation, domestic market situation, and also the results which have been pouring in over the past couple of days now, so given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
0: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are is there that why there the number is so encouraging? Why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending? One of the reason is because of the market situation. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good in the domestic sector, that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Just on 15th of this month we were going through the export data, and there we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means the companies are able to sell their produce outside. Now the concern here is that the cost of production has slightly gone up, and that is why the profitability is of course on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been has been normalized, so all these things are contributing in that. So the number one is export number, and then the consumption number.
1: Right. और इस बीच बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं। टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
4: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी
0: कौन सी पॉलिसी आपने, टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही?
4: संतोष
0: पॉलिसी।
4: हाँ, पोस्ट ऑफिस का है, संतोष पॉलिसी इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो या
0: फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है।
4: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है, तो मैं बोले 41। तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको, 7 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा। तो सर वो 2 लाख इंश्योरेंस बताया प्रति, मगर 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए।
0: okay.
4: 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या, जीएसटी वीएसटी वो तो कट रहा है क्या उसमें? पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, उसमें एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है, यही मैं जानकारी चाहते हैं। और एक और सवाल है
0: जी,
4: जैसे पीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं
0: जी,
4: उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है, दोनों में जानकारी चाहिए सर।
0: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोलें, चाहे आप बैंक में खोलें या डाकघर में खोलें, ब्याज की दर एक होती है, क्योंकि पीपीएफ को बैंक नहीं चलाता, बैंक वहां पर एक तरीके से आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराता है कि आप हमारे यहाँ आकर के अकाउंट खोल लीजिए, डाकघर में भी आप खोल सकते हैं, तो उसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत

0: है। दूसरी बात है कि जो आपने जिस पॉलिसी की बात की, जीवन बीमा पॉलिसी की बात की, पहली बात कि देखिए व्यक्तिगत तौर पे जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हैं उस पे कोई जीएसटी नहीं होता है, तो उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। हाँ, यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ता है। रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है, वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं, और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसी हैं, उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफी ज्यादा होती है।
1: Yeah, moving on to crude now. The global crude oil prices reversed their early gains today after Iran's foreign ministry said negotiations with the US could be pursued based on national interests. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5% down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishirji. On crude,
0: the problem we are facing at this moment is there is still a lot of uncertainty. Mm-hmm. Sometimes you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. Mm-hmm. On the other side, when you hear US president, he has its own way of explaining the thing. So at this moment, today you will see, I mean, as you just mentioned, that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
1: 0.8%.
0: 0.8, yes. I'm sorry. 0.8% and it was $87 a barrel. Mm. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80. Then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
1: Right. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.5% up at 1,42,390 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% up at 2,19,670 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange में अगस्त अनुबंध वाला सोना आधे प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,41,754 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% की बढ़त के साथ 2,19,233 रुपए पर चल रही थी। शिशिर जी, संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी आपसे सोने और चांदी के भाव पर।
0: देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई के बीच में सोने चांदी के भाव में गिरावट आ रही है। ये कई बार लोग को हैरान भी कर रहा है, लेकिन आप इसको सीधा जोड़िए डॉलर से। जब जब डॉलर मजबूत होगा, सोना उतना ही ज्यादा कमजोर होगा।
1: राइट।
2: शशि जी, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे तमाम कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: थैंक यू सो वेरी मच शशि जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239। इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर, एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस decline. And that's all we have in this edition of Market Mantra. I am Nishit Kumar along with my co-anchor Prachi Priya saying goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई. विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई. हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित की गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई. इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका. वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय

0: न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जाँच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने व्यापार, समुद्री साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने में के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही मौसम बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with the obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to the father, Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and Samajwadi Party over the NEET issue.

0: என்னடா சொல்றான்?
1: ஐயோ,

0: தகிடதா.
1: தேங்க் யூ.
0: ரொம்ப சிக்குதடா.

0: தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई. विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई. हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई. और ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई. इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका. वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है. इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है. वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली. आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं. संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है. श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया. केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से

मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर अरुआल्डो मार्टिनेज आचावास केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद घटना में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि 1 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घटना के समय जहाज पर 5 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 17 सदस्य थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों पर हमला तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई. विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई. हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई. इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका. वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है. इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है. वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली. आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं. संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं. श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया. केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई. श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया. इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है. वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच

0: जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्किस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत में के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र सहायता केंद्र की शुरुआत के साथ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नए डिजिटल लोकल पास के पात्र यात्री टोल प्लाजा जाएं बिना राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मासिक टोल पास खरीद सकते हैं। प्राधिकरण ने मार्ग मित्र सहायता केंद्र भी शुरू किया है। यह राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप में एकीकृत डिजिटल सहायता मंच है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं, उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष सेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by RS Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi yesterday. Social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the rank of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi Police said, during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behavior and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. Delhi Police said protesters attacked police personnel, vandalized police and other government vehicles and resorted to violence, posing a serious threat to public order. Police said during the scuffle, around 60 protesters were also reported to get injured. It said about 70 protesters have been detained. Appropriate legal action is being initiated and an FIR is being registered under the relevant provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही रद्द स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में हिंसा में बदलने से 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों की मेडिको लीगल जाँच चल रही है। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी।

0: सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों पर सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बीच कल दो दिनों के सदन की कार्यवाही के कई बार बाधित हुई। हंगामे जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित कर दी गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रमण और हिंसक वार्ताओं किया, वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देश के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले में पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी के घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पुलिस के सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन के सहयोग करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में बारिश के जुड़ी घटनाओं में जम्मू संभाग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी ऐसे अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।